हाँ हाँ जी चतर बट स्पेशली इनको स्पीकर है ना, कुछ तो इनकी इतनी अच्छी नहीं है मेरी तरह।

का जो भी है एंजॉय कीजिएगा, मिलते जुलते हैं, थोड़ा से इसको एंजॉय करते हैं, वापसी होगी फिर होगी गपशप।

आओ आलू चिकन दे स्पिन वाला अंगूठे मिलावी की 40 रुपए बंदी किलो, आलू चिकन सुर वाले तुम तो मिलावे की 60 रुपए बंद किलो, टमाटर मुंह तो मिलावे की 90 रुपए बंद यानी लसकम 100 रुपए बंद दर्जा है अव्वल और दर्जे दो मुंह तो मिलावे की 80 रुपए बंद, प्याज मुंह तो मिलावे की दर्जा अव्वल पर 80 रुपए बंद दर्जे दो 80 रुपए बंद, तुम चेना मुंह तो मिलावे की 500 रुपए बंद, तुम देसी मुंह तो मिलावे की 200 रुपए बंद दर्जे अव्वल और दर्जे दो देख मुंह तो मिलावे की 80 रुपए बंद, कचालू दम तो मिलावे की 150 रुपए बंद, अदरक मिलावे की दर्जे अव्वल पर 70 रुपए बंद किलो और दर्जे दो 350 और उधर करेंगे गाजरा चाइना वाला मिलावे की दर्जा उल पयो सल शल दर्जे दो 100 रुपए बंदे, बिंगन मुंह तो मिलावे की पयो सल शल रुपए बंदे किलो, लीमू मिलावे की 300 रुपए बंदे, पालक गेड़े मिलावे की 60 रुपए बंदे, कीरा मुंह तो मिलावे की दर्जा उल 80 रुपए बंदे और दर्जे दो 80 रुपए बंदे, सब शिल मर चके जिदे अगर मुंह मिलावे की दर्जा उल पर यो सल 150 रुपए बंदे किलो, शिमला मर्चे की मुंह मिलावे की दर्जा उल पर 100 रुपए बंदे किलो दर्जे दो 80 रुपए बंदे किलो, बेंडे मुंह मिलावे की दर्जा उल पर 50 रुपए और दर्जे दो 110 रुपए बंदे किलो, टेंडे मुंह मिलावे की दर्जा उल पर 100 रुपए बंदे किलो दर्जे दो 80 रुपए बंदे किलो, करेला मुंह मिलावे की दर्जा उल पर 80 रुपए बंदे किलो दर्जे दो 150 रुपए बंदे किलो, लौकी कद्दू चेती मुंह मिलावे की दर्जा उल पर 100 रुपए बंदे किलो दर्जे दो 80 रुपए बंदे, पोल गोभी मुंह मिलावे की दर्जा उल पर 100 रुपए बंदे दर्जे दो 100 रुपए किलो, बंद गोभी दाम मिलावे की दर्जा उल पर 80 रुपए बंदे दर्जे दो 50 रुपए बंदे किलो, मटर मुंह मिलावे की दर्जा उल पर 80 रुपए बंदे किलो दर्जे दो 100 रुपए बंदे किलो, फ्राशबिन दाम मिलावे की दर्जा उल पर 200 रुपए बंदे किलो दर्जे दो 100 रुपए बंदे किलो, पेपर बगैर द पाण वाला दाम मिलावे की पयो सल 100 रुपए बंदे किलो मुंह मिलावे देशी, और उधर करेंगे माड़ू कद्दू चेदे जिनाब दाम मिलावे की दर्जा उल पर 80 रुपए बंदे औ दर्जे दोम चुकम दे जिनाब दी का मुंह मिलावे की प 80 रुपए बंदे, नो सो जिनाब दाऊद नन चुकम सिशि नखनामा द सब्जे वाले सर अगर तो सर मा द प्रोग्राम इसे जुड़ा कर ना नो बिल्कुल जिनाब कले कले द सिखेगी वे इंसान लग दे खदा कीगी पौफा उप जफा के दरोग पर इख्तिया के नो खैर जिनाब द सब्जे रेट खुदा पता लगेगा उस तास सर शामिल कम जिनाब द फ्रूट से रेट चली गना द फ्रूट रेट सर दर सरो में शामिल कम नो फ्रूट रेट डेफिनेटली जिनाब तास सर शामिलेगी खुजदल ता द सॉन्ग में कतले ले خو هغه څنګه ته ملاو نشو نو خیال مې هغې طرف ته لاړلې ځکه مې د نخنامه پکې مسکې لږه سکپ کړله، خیر جی تاسو به ټینشن بالکل نه لې خی جناب تاسو به ټینشن بالکل نه لې مړه زه منه تاسو له ټینشن اخیستلو څه ضرورت دی کنه، خیر جی دغه څنګ به تاسو ته پلېږېږي د شفاروق آواز دی آی تھینک چې خی جی د سبزی آف د سبزی ریټ نه بعد د فروټ چې کوم ریټ دی सेब सफेद स्पेशल आलम तो मिलावे की दर्जा पर दरिनिम सवा मंदे दर्जे दो पर दरिस सवा सेब गोल्ड सुर वाले तो मिलावे की दर्जा पर 700 रुपए बंदे किलो दर्जे दो पर दरिनिम सवा सेब बिरयानी मिलावे की पपिनिम 100 रुपए बंदे दर्जा वाल दर्जे दो पर 50 रुपए किलो द लोका आरती हाँ जी हाँ 300 रुपए मंदे और दर्जे दो 200 रुपए मंदे अंगूर चिकन दे जिन्हें आदमी मिलाएगी 300 दर्जा वाल दर्जे दो 250 केले तो मिलाएगी दर्जा वाल पर 250 रुपए दर्जन दर्जे दो 200 रुपए दर्जन आड़ू नंबर वन मिलाएगी 300 रुपए मंदे आड़ू दो चिकन दे आदमी मिलाएगी 250 रुपए मंदे उधर करेंगे 225 रुपए मंदे खरबूजों तो मिलाएगी जिन्हें दर्जे वाल पर 100 रुपए दर्जे दो 80 रुपए किलो तरबूजों तो मिलावेगी इन दवाना 50 रुपए में दर्जा वाल दर्जे दो 70 रुपए में गर्मों तो मिलावेगी पयो सल देश दर्जा वाल दर्जे दो 50 रुपए सौ जिना मंग सरवन नख नामा सरवा परवान के शामिल कर ला आई होप तास तो वापस लेगी दिली भी कहना चिन्हन पर डिस्क बड़े ग्राम के तमर से रेट चलेगी द सब्जियानों से रेट दे द फ्रूट से रेट दे और दे सरा सरा द एग्स यानी द अंडों से रेट चलेगी पद पद तलगी दिली क्या ना समझ जनाब सासों में से जिस बलहार आगे ले दी जर जर शामिल कुछ ही अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग सर जी संग गए माँ बेजने आई जाए बाद एक मस्त सलाम आया सर जब कुल्टिक डाल गई माँ तासुख पलो है तासुख ही दबास दली है नष्टम उगड़ दे खज ता समझ जिस कपड़े बिन्स माँ आओ प्रोग्राम आओ र माँ खजी वाह वाह वाह वाह
कपड़े मशीन दे लगा लेते सर, खाली कितवार प्रेस ना लगाई।

Anyhow, बिल्कुल तरफ से गुरु बिल्कुल कौन कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। बिल्कुल जनाब दी सर जमे खबर होने शोले लिहाजा तासो दोबारा कोशिश कोली छे पर 0301-711-8899 बंदे हां 0301-711-8899 0309-7111-9 अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो, वालेकुम अस्सलाम, ढेर से तमन ना दास के चल ले खैर के आवाज ना राजी के ना खैर दे मड़ा टेंशन बना ले अबले कल बजन सवाल 0309-711-8899 अस्सलाम वालेकुम जी, हाय खैर मुबारक दास तुम दे अख्तर मुबारक शे अख्तर कल दे हेलो कॉल ढाब शरे सिर्फ मुबारक है तुम्हारे कॉल कर देर मंद ने को अब अख्तर चिकन देख रहा है नज़दीक देखे ना लेकिन और जी पा दी थी मर्द अख्तर रज़ु की दस अक्सर कतली है जंगु ना उम्मीद जात भी के ना जंगु ना मकवे मरा लाज मर्द बदिश है मेरे ख्वाह सास ख्वाह दे जंगु ना नहीं पकार के ना जंगु ना जंगु ना सर खुश नहीं किये माँ आओ समझ दे इधर खूबनु दुनिया अलग रंगी ना खदा पन नफरत और पोरी शाह जाना ना मीना खदा नुमरा ते नफरत नु सर से किये नफरत नु सर खुश नहीं किये के ना कसंगा नफरत नफरत नु बाय बाय खाम गोरु जी ना बल्कि मैसेज चाय कर दे

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

हाँ जी, ग्रान ओरिजिन कुत्ता सोरे रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम प्रोग्राम दे जिम गदी 4K कॉस्मेटिक्स की पता उन सारा प्रोग्राम तास दियो ले सुना तुर दोला सुबह जो पूरी है पर रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम बांदे और 0997 310 400 मंता सुनते टेलीफोन कॉल ले शे दी सरा सरा 0309 711 8899 मनी मुक्ता टेलीफोन हम कॉल ले शे और मैसेज हम कॉल ले शे दी सरा सरा तासो जिम गदा प्रोग्राम मैसेज हम रा लेगले शे और मंग गुरु जमग और फहीम भाई दो मुंग तदियो नात दरखास्त कर दे और दू तदा नात चे दे गुरु चे दा नात मुंग सरष्टे और कनिश चे दा नात दू ता प्ले कुजी और गुरु चे दा दे नात अल्फाज से दीजी।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: अमन दरुह संदरदा।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: अलहमद इस्लामिक इंटरनेशनल पब्लिक हाई स्कूल बटाग्राम लतीरु योशमार कलूना तालीम पर मैदान की खुल खिदमत तबसर कभी नकाम बची खुल बची गणी न दौरे हाजिर तालीम वर्कवल सरा सरा और माशुमानों के इखलाकी किरदार साजे बांधे हम खुसूसी तवज्जो साथी कमचे तालीम पर मैदान के और बटाग्राम के लतीरु द्रु कालूना टॉप पोजिशन होल्डर इदारा दा अलहमद इस्लामिक इंटरनेशनल पब्लिक हाई स्कूल बटाग्राम जमुन खुसूसियात द दौरे जदीद तालीम वर्कवल माशुमानों के इस्लामी अकदार रावस्तल जो सफा सुथरा और तालीमी माहौल वर्कवन के इदारा द स्कूल फुल ट्रांसपोर्ट और द सिक्योरिटी बेहतरीन इंतजाम कंप्यूटर लैब और द लोबो खपल मैदान खुमश्ता नो दखपल औलाद मुस्तकबिल रोखा नकड़े मुंगसरा द प्ले ग्रुप नवाला तर नाइन्थ क्लास पूरी द तुलबो तालिबात पर महदूद सीटों बांधे दाखिले शुरू दी नो पता याद साथे अलहम इस्लामिक इंटरनेशनल पब्लिक हाई स्कूल निस्त वावडा ऑफिस गेरवली बाजार बटाग्राम मजीद द मालूमात द पारा द टेलीफोन शमेरा दा 0997-310-444 मोबाइल नंबर दे 0345-94-72-137।

0: शुक्रिया। आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: अलहमद इस्लामिक इंटरनेशनल पब्लिक हाई स्कूल बटाग्राम लतीर उलोशमार कलूना तालीम पर मैदान की खपल खिदमत तब सर कभी नकाम बची खपल बची गणी दौर हाजिर तालीम और कबुल सरा सरा और माशुमानों के इखलाकी किरदार साजे बांधे हम खुसूसी तवज्जो साथी कमचे तालीम पर मैदान के और बटाग्राम के दतीर उद्रव कालूना टॉप पोजिशन होल्डर इदारा दा अलहमद इस्लामिक इंटरनेशनल पब्लिक हाई स्कूल बटाग्राम जमुन खुसूसियात दौर जदीद तालीम वर कबल माशुमानों के इस्लामी अकदार रावस्तल जो सफा सुथरा और तालीमी माहौल वर्कउन के इदारा द स्कूल फुल ट्रांसपोर्ट और द सिक्योरिटी बेहतरीन इंतजाम कंप्यूटर लैब और द लोबो फुल मैदान खुमश्ता नुदखपल औलाद मुस्तकबिल रोखा नकड़े मुंगसरा द प्ले ग्रुप नवाला तर नाइन्थ क्लास पूरी द तुलबो तालिबात पर महदूद सीटों बांधे दाखिले शुरू दी नुपता याद साथ अलहम इस्लामिक इंटरनेशनल पब्लिक हाई स्कूल निस्त वावडा ऑफिस गेरवली बाजार बटाग्राम मजीद द मालूमात द पारा द टेलीफोन शमेरा दा 0997-310-444 मोबाइल नंबर दे 0345-94-72-137।